इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

विचार बुरा करते हाथ पलक फड़के हाय के दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा जालिम हयात।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: यार सुनो, वो सिक्योरिटी दादा की कॉफी ली।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत जो है ना हो ही चली है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने खुद के अलावा अपनों का बहुत ख्याल रखा होगा। अक्सर हम वही करते हैं ना, खुद के बारे में सोचते हैं, अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं, लेकिन पता है क्या जिंदगी में असल मज़ा क्या है? कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचना जो अपनी ड्यूटी एंड फर्ज के चलते हर दिन हमारा ख्याल रखते हैं और हम जो हैं उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सिक्योरिटी वाले भैया, वो आपके घर का हेल्थ, या तो फिर आपके ऑफिस का वो कुलीग जो अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहा है। यार कभी उनके लिए ना बस एक कॉफ़ी का कप ले जाकर देखो, बिना कहे ज़रा एक्स्ट्रा सा टिप देकर देखो, अपने कुलीग का ज़रा सा एक्स्ट्रा काम करके देखो। वो जो आप खुशी देते हैं ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यार खुद के लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए जिए तो कोई बात है, और काइंडनेस जो है ना आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, बस ज़रा सा आपका दिल मांगती है। और इसी बात पे मैंने कुछ लिखा है, सुनाओ। किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाओ, दिलों के दर्द की पहचान बन जाओ। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर जीना है तो किसी की जान बन जाओ। तो बस एक छोटी सी कोशिश आज करते हैं किसी के चेहरे में मुस्कान लाने की। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कम्प्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कम्प्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पजाक। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: यार चाय लवर्स की ये दास्तान जो है ना बड़ी निराली है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. अगर आप चाय लवर हैं तो मेरी इस बात से जरूर कनेक्ट करेंगे। देखिए बात इतनी होती है कि अक्सर ना हमें गर्मी के दिनों में कुछ भी गर्म खाने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है नहीं यार ठंडा ठंडा कुछ दो, दही चावल दो, आमरस रोटी दो, गर्म चीजों की बात ही ना करो। लेकिन हाँ एक चीज ऐसी है जिसके बिना हमारी गर्मी भी पूरी तरह से अधूरी है, वो है गर्मा गर्म चाय की वो प्याली। नहीं ये कॉम्बिनेशन मुझे आज तक जनरली कभी समझ नहीं आया कि भैया गर्मी के दिनों में बाकी गर्म चीजें तुम्हें ना पसंद आए लेकिन चाय आखिरकार क्यों कैसे। देखो ये बात जो है ना आप मुझे बताना जरूर है। Having said that, गर्मी की बात करते हुए कतर का मौसम जो है इस वक्त एक बार फिर से मुझे याद आ गया। Today's maximum temperature is going to be somewhere around 41, minimum around 30. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठंडा ठंडा पानी जो है इस वक्त पीते रहें। कलेजे दिमाग की ठंडक के लिए एक ही काम करना है, सुनते रहना है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। For bright future call now 3100-0813.

Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में अगर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने की कोशिश करूं जिसने हमेशा खुद से पहले औरों के बारे में सोचा, खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, तो वो है हमारी माँ। यार चाहे खुद कितनी भी भूखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पेट भर जाए ना तो उन्हें जो है तसल्ली और खुशी मिल ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अगर सुकून एंड चैन की नींद सो लेना तो उनकी नींद जो है वो हो ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हम जो है ज़रा सा मुस्कुरा देना तो उनका दिन जो है वो बन ही जाता था। जिस माँ ने इतना कुछ किया, क्यों ना अब हम उसके लिए कुछ कर लें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेशल इवेंट, दैट इज मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जो एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखिए, बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मॉमी जो है एक सुपर मॉमी है, आप खुद जो है एक सुपर मॉमी है, या आपकी वाइफ एक बड़ी ही प्यारी सी मॉमी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, फटाफट से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई है, इस रेड कार्पेट पर चलने की बारी आ गई है, इस इवेंट में बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने की बारी हो गई है। एंट्री के लिए एक ही काम करना है, फटाफट से एक मिनट का रील बनाना है आपको अपने बच्चे के साथ, दैट डिपिक्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ शेयर, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000189 6। रील में होना क्या चाहिए, कुछ भी यार, कोई फनी रील बनाए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो आपको पसंद है, एंड बस हमें भेज दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, ऑडिशन में अगर सेलेक्ट हुए तो बस पेजेंट का हिस्सा आप जो है अपने बच्चे के साथ जरूर बनेंगे, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000189 6, वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज। डेडलाइन जो है बस इस थर्सडे तक ही। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: यार सच कहूं, ये मुफ्त की छुट्टियों की अहमियत ना बस आप और हम ही समझ सकते हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, मुफ्त की छुट्टियों से मैं बस उन्हीं छुट्टियों को रेफर कर रही हूँ जो हमें हमारे एनुअल वेकेशन के अलावा मिलती हैं. क्या है ना, कतर में आने के बाद समझ में आया ये ईद की छुट्टियाँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल डे, भाई ये सारी छुट्टियाँ कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं. बचपन के दिनों में तो हमने इसकी ज़्यादा इज्जत की नहीं, क्योंकि क्या है ना, भारत हो या पाकिस्तान, जितनी दफ़ा तो हम स्कूल नहीं गए उससे ज़्यादा हमने छुट्टियाँ मनाई हैं. पापा भी ऑफिस कम, घर पर ज़्यादा हुआ करते थे. लेकिन यहाँ पर जैसे ही पता चला था 27th ऑफ मई ऑनवर्ड्स फाइनली ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको ना इस ब्रेक का ना जाने कितने अरसों से इंतजार था. एंड हर कोई मेंटली कहीं ना कहीं पैकिंग शुरू कर ही चुका है. कईयों को ये लग रहा है भैया इंडिया जाना है, घर वालों से मिलके आना है, कोई कहीं घूमने जाने वाला है, और जो यहां यही सोच रहे हैं आराम से इत्मीनान से दोस्त यारों के घर जाना है, ईद मनानी है, बाकी टाइम पे सोना है. मेरा मूड तो यही है. हैविंग सेड दैट, इतना ही कहना चाहूंगी जहां भी ट्रैवल कर रहे हैं सेफली ट्रैवल करें. एयरलाइन से अपना स्टेटस जो है वो पूरी तरह से चेक करते रहें, क्योंकि इस वक्त फ्लाइट टाइमिंग्स जो है काफी चेंज हो रही है. पता चला कि फ्लाइट तो ओरिजिनली 7 बजे की थी, ये क्या प्रीपोनो के 3 बजे निकल भी गई. सेफली ट्रैवल करें, स्टेटस चेक करते रहिएगा, लेकिन जब भी जाएंगे जहां भी जाएंगे वहां की अच्छी वाली मिठाई जो है ना हमारे लिए ले ही आए. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: खट खट,
6: who there?
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट, who there?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: सच कहूँ, असल जिंदगी तो हमने क्लासरूम के अंदर नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर जी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aryan Show with you. Well, आज की डेट में जब दुनिया ब्रांड्स की बात करती है, क्यों ना मैं आपको बुक्स के करीब लेकर चलूं? Well, I'm talking about the 35th Doha International Book Fair, which is currently happening at Doha Exhibition and Convention Center. And believe me, the scale is massive. More than 500 publishers, over 36 participating countries, 910 booths, and over 1.8 million books all under one roof. क्या बात है यार, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर लाखों कहानियां। यार पता है बुक्स की सबसे खास बात क्या है? हर एक किताब किसी ना किसी की जिंदगी में एहसासों का एक खास खजाना है। किसी के लिए इमोशंस, किसी के लिए एक्सपीरियंसेस, किसी के लिए नॉलेज तो किसी के लिए इमेजिनेशन, लेकिन हमारे लिए मस्ती का मेन ठिकाना। मुझे स्कूल टाइम की वो बात आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है कि अगर किसी एक दोस्त ने अपनी बुक नहीं लाई तो टीचर जो है उसे क्लास के बाहर निकालती थी। एंड जैसे ही हमने देखा कि भाई पलटन का एक सदस्य बाहर निकल चुका है, हम इसे सारे अपनी बुक्स छुपाते थे इसी उम्मीद में कि हमें भी क्लास के बाहर निकाला जाएगा। एंड उस छुपी हुई किताब के चलते हमने जिंदगी के कितने खूबसूरत पलों को जिया है ना, इसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। क्या आपने भी ऐसी कोई यादें जी? 5000 1896 Let's get connected there. Meanwhile, stay tuned to Mirchi. Bandi ka naam Anshu. Enjoy.
2: Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
3: Mirchi, fresh maal.
4: Swag style aur bold energy ke saath suno lipstick.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Nici.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana, Rambala, Murga, Murga. Ne vin pa la Murga. Nici, Murga.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: गए थे जी
3: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
2: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नाराज की बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था बहुत दूर था लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर थे
2: बहुत दूर था
3: भाई तने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगते
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर में चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
3: नहीं
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
2: वो
3: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: Ja Simran, ja jeere apni zindagi, ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने
4: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM

0: देखिए क्वीन तो आप हैं, जरा इस वक्त ये बात आपको महसूस भी करा दें।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. जब तक रानी को वो रानी की तरह महसूस ना कराओ तब तक बात कैसे बने। अगर जिंदगी सबसे खूबसूरत रानी की हम बात करें तो वो होती है हमारी माँ। यार हमारी जिंदगी को जिसने पूरी तरह से राजा की तरह बनाया वो हमारी रानी महारानी ना हो तो फिर क्या ही हो। तो चलिए जी, जितनी भी मॉमीज उस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, या आपकी वाइफ एक प्यारी सी मॉमी है, आपकी मम्मी खुद एक बहुत ही प्यारी सी मॉमी है, तो मिर्ची उनके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना ही वो सिर्फ राइज एंड शाइन कर सकती हैं बल्कि अपने अंदर की उस क्वीन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। बिल्कुल, इसकी एंट्रीज जो है अब हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि इस पेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस रेड कारपेट में आपको वॉक करना है, बहुत सारी खूबसूरत सी यादें अपने लिए संजोनी है, बनानी है, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक खास इवेंट का हिस्सा बनना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से एंट्रीज के लिए आपको एक ही काम करना होगा, एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का रील। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, एक फनी वीडियो हो सकता है, कंपाइलेशन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकता है, डांस, ड्रामा, पोएट्री, व्हाट एवर यू लाइक। बस ये वीडियो जो है आपके और आपके बच्चे के खूबसूरत बॉन्ड को डिपिक्ट करना चाहिए और बस हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000-1896। अगर आप सेलेक्ट हुए तो ऑडिशंस पे आपको बुलाया जाएगा एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो पेजेंट यानी कि मेन ऑन ग्राउंड इवेंट में आपको ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेमोरीज बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके अलावा ताज भी आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट से एंट्रीज भेजें। मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: भाई साहब, थ्री इडियट्स तो पता थे, ये फोर्थ इडियट कहाँ से आया?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार एक ऐसी फिल्म जिसने हमारी जिंदगी में सक्सेस की डेफिनेशन एंड परसेप्शन दोनों को बदल के रख दिया, तो उसका नाम है थ्री इडियट्स, डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी. एंड क्या कमाल की स्टोरी, रांचो, फरहान एंड राजू, जो आज भी हमारे दिल में बसी हुई है और एक ही बात हमसे दोहराती है, ऑल इज वेल. वेल, क्या आपको इस फिल्म के बारे में एक खास बात पता है? द इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो इस फिल्म में हमें दिखाया गया, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि इसकी पूरी की पूरी शूटिंग जो है वो IIT मुंबई में हुई, लेकिन ना, इस फिल्म की शूटिंग के लिए मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस यूज किए गए थे, जिसमें IIM बैंगलोर शामिल है, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे तो है ही है. लेकिन एक और खास बात इस वक्त आपको ये बता दूं, थ्री इडियट्स का सीक्वल तो बिल्कुल आने के लिए तैयार है, स्टोरी पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन राजकुमार हिरानी ने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया है कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर फोर्थ इडियट भी हो ही सकता है. और ऐसा माना जा रहा है कि विक्की कौशल कुड बी द फोर्थ इडियट. आपकी क्या राय है इसमें? फोर्थ इडियट हो तो आखिरकार कौन हो या बिल्कुल भी ना हो? 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम Mirchi1 कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन।
4: इट्स हॉट।

0: यार एक बात बताना, कभी सब्जी मंडी में जाकर 5 रुपए की धनिया के साथ 2 मिर्चा फ्री में लायो?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार क्या कमाल इन गजब के दिन हुआ करते थे जब बचपन के दिनों में हम अपने शहर की लोकल सब्जी मंडी जाते थे. एंड भाई वहाँ पे सबसे मजा तो ये आता था कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हम लाते थे लेकिन जो मोल भाव कर कुछ ना कुछ फ्री में उठा लिया करते थे. अलग ही दिन यार. लेकिन आज अगर दोहा की बात करें तो एक वक्त था जब कतर को देख कर लोग कहते थे डेजर्ट में फार्मिंग इम्पॉसिबल. और आज वही कतर अपनी लोकल फार्म्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सीजनल मार्केट्स के थ्रू एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हर जगह बन ही चुका है. इस वक्त एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके बीच पेश करना चाहूंगी कि कतर के सीजनल लोकल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स की अगर हम बात करें जैसे अल शिहानिया, अल वक्रा, अल शमाल, अल खोर एंड अल तकीरा यार्ड्स, ये मई के एंड मोस्टली 23rd ऑफ मई तक बंद होने वाले हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल सीजन जो है वो इस वक्त रैप अप हो रहा है. एंड ऑनेस्टली यार इन मार्केट्स ने हमें सब सब्जी खरीदने की जगह नहीं दी बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया, वो सब्जी मंडी वाला. अब वो बात अलग है कि 2 मिर्चे जो है आज तक हमें यहाँ पे कभी मुफ्त में नहीं मिले. वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं, अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो आज के डेट में 100 से ज्यादा लोकल फार्म्स एक्टिवली सीजनल प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसी एडवांस्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं जहां बिना ट्रेडिशनल सॉइल के वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है. मतलब डेजर्ट कंट्री ने टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन के साथ फार्मिंग को लिटरली रीडिफाइन कर ही दिया. चलिए जी, सीजनल याद्स ना सही लेकिन हमारे होलसेल मार्केट्स तो आज भी हमारा साथ देंगे. जैसे अल सहीलिया सेंट्रल मार्केट जो कि कतर का सबसे बड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल हब माना जाता है. एंड साथ ही सलाल सेंट्रल मार्केट, अल वक्रा मार्केट तो भाई हमारा अड्डा. कभी आओ तो बताना, मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Hollywood Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: बात करें एक्सचेंज रेट्स की, तो भाई एक कतरी रियाल इंडियन करेंसी में 26.41, एक कतरी रियाल लंकन रुपीज में 91.69, एक कतरी रियाल इक्वल्स टू बांग्लादेशी टका 33.65, बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज में तो 42.20, और एक कतरी रियाल इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज 76.90। बस ये था पैसों का हालचाल, बोले तो झकास पैसे की बात।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: मोटर से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
3: मैडम प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है.
2: ठीक है सर.
3: 5 सेकंड जल्दी.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बता लो.
2: सॉरी, कोई कस्टमर के लिए. हेलो
3: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता. हेलो.
5: हाँ जी सर.
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी या ये किस तरह रुकेगी?
5: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड.
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
3: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर. इग्निशन ऑफ कर दो.
3: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं?
5: हाँ जी.
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी.
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
5: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई.
4: मैडम क्या नाम है आपका?
2: दिव्या.
4: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
2: I was so tense, I don't know what happened.
6: कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot. Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
7: अर्ज किया है.
8: इरशाद इरशाद.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरे अरे, किचन और ऑफिस नहीं बल्कि इस वक्त रेड कार्पेट और क्राउन कर रहा है आपका इंतजार।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. To all the wonderful mommies who are connected with me at the moment, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस वक्त बेल एंड पाटा चकला और फाइल्स नहीं बल्कि क्राउन और रेड कार्पेट आपका इंतजार कर रहे हैं बिकॉज Mirchi Mommy Award Season 5 is back and it is going to be the biggest and boldest edition until now. What are you waiting for? फटाफट से एक मिनट की रील आपको बनानी है अपने बच्चे के साथ और भेज देना है हमारे WhatsApp नंबर पर which is 5000 1896 एंड अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको मिलेगा मौका कि आप ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन सकें और इस मैजिकल मोमेंट को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर सकें। सो फटाफट से एंट्रीज भेजिए, थर्सडे के अंदर अंदर ही भेजनी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: वक्त की सबसे खूबसूरत बात बस यही तो है कि अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, दिस इज आज अंशु विद यू। या लाइफ में ना कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं जब सब कुछ स्लो लगने लगता है, प्लान्स डिले होते हैं, आंसर्स नहीं मिलते और लगता है यार ये सब कुछ कब बदलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिंदगी जो है ना बहुत खूबसूरत है, एक तोहफा है, शायद इसीलिए आज को प्रेजेंट कहते हैं। एंड कुछ भी ना परमानेंट नहीं है, ना ही आपका दर्द ना ही खुशी। और कभी कभी एक अच्छी सी कॉल, वो एक खूबसूरत सी सुबह सारे अंधेरे को बस दूर कर ही देती है एंड उसके साथ सब कुछ बदलता है। तो अगर आपको लगे कि इस वक्त आप किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो बस उम्मीद मत छोड़ना। और एक बात जरूर याद रखना कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह रोशनी जरूर लाती है। और हालात चाहे जैसे भी हो जाएं मगर उम्मीद जरूर मुस्कुराती है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: रसीले यारा आम रसीले।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, Qatar में summers जो है वो full on आ चुके हैं और आपने अब अगर सुक वाकिफ के mango festival का wait ना किया तो फिर क्या ही किया? अरे बस वही festival जहां आम सिर्फ खाए नहीं जाते बल्कि पूरी तरह से celebrate किए जाते हैं. Indian mangoes, पाकिस्तानी mangoes, यार हर variety का अपना एक अलग fan base है. कहीं वो रत्नागिरी अल्फांसो का craze, तो कहीं चौसा की वो sweetness, कहीं लंगड़ा का taste and भाई वो घर वाला आम का अचार. यहाँ पे ना हमें जरूर मिल जाता है. सच कहूँ उसकी खुशबू आते ही ना मैं ऑफिशियली अपने बचपन मोड में चली जाती हूँ. लेकिन चलिए इस वक्त ना अगर मैं इंडियन मैंगोज की बात करूँ तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. इंडिया ग्रोज नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगोज. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, दुनिया भर का आधा आम जो है ना इंडिया में ही होता है. एंड मैंगोज आर ग्रोन अक्रॉस ऑलमोस्ट 2.2 to 2.5 million hectares इन इंडिया. इसके साथ ही ये भारत का लार्जेस्ट फ्रूट क्रॉप है. लेकिन बात इतनी है कि जितने मैंगोज प्रोड्यूस किए जाते हैं ना भारत सिर्फ उसका 1% ही एक्सपोर्ट करता है. मतलब हम खुद ही इतने आम खा जाते हैं कि दुनिया तक क्या ही पहुंचाएंगे. बढ़िया है जी. लेकिन जितने आम कतर में आते हैं हम जो है ना बड़े खुश हैं. इनफैक्ट कतर एक ऐसी जगह है भाई जहां पे आपको 12 महीने आम खाने को मिलता है. बहुत अच्छी तरह से आप ये बात जानते हैं. तो हम तो अपने घर वालों को यही कहते हैं, भैया तुम तो साल के 3-4 महीने खाते होगे, हम तो 12 के 12 महीने कमाल दुनिया भर के आम खाते. क्या कहती पब्लिक? वेल, जैसे ही डेट्स आएंगी सुक वाकिफ मैंगो फेस्टिवल की मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी. अगर आप घर पे आम का अचार बनाए तो प्लीज मुझ तक पहुंचा देना. 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोर्डल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
0: Only on Mirchi, it's hot.
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot.

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी।

0: बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है। डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, तो शाम को समंदर के पास बैठ कर बस हवा को फील करना चाहते हैं। वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं। देखो यार, ऑयल एंड स्काई स्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी। डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है। भाई, समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं। शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती। वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली। हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
3: Say wow! Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
4: Swag, style और non-stop dancing के लिए तैयार हो जाओ।
3: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
4: Wow!
5: Say wow!

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट तो सर, आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर।
3: वेट सर, वेट,
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी।
3: गुड सर, वेरी गुड सर।
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
2: पूछो यार।
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100।
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा।
3: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं।
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ये जवाब मैंने दिया। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: Laya aipe best action sweets. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
6: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
7: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
6: अभी कॉल करें 3100-0813।
8: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
9: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए झाड़ू चप्पल बेलन इसका स्किल तो बहुत दिखा दिया, अब जरा क्वीन की तरह रैंप में वॉक कर अपना अगला स्किल दिखा ही दे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. सच कहूँ, मम्मी जो होती है ना, ये सर्व गुण संपन्न होती है, जहाँ पर एक तरफ झाड़ू बेलन चप्पल के साथ इसे रौद्र रूप धारण करना आता है, तो वहीं दूसरी तरफ रैंप में क्वीन की तरह वॉक कर वो नजाकत कैसे दिखाना है ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बस इसीलिए तो हर एक मॉमी होती है सुपर मॉमी। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी भी बस सुपर मॉमी है, तो अब मिर्ची मॉमी बनने का वक्त जो है वो आ ही चला है। वेल, मिर्ची मॉमी इज बैक विद इट्स बिगेस्ट एंड बोल्डेस्ट एडिशन। Absolutely, we are talking about edition 5 and अगर आपको लगता है मिर्ची के सबसे खूबसूरत इवेंट का आपको हिस्सा बनना है, तो what are you waiting for? फटाफट से एंट्रीज भेजने की तैयारी आप कर ही ले। आपको भेजना होगा एक वीडियो, 1 minute reel that will basically depict the beautiful bond that you carry with your child. It could be anything, any funny video, compilation of beautiful memories, dance, drama, music, poetry, जो भी आपको पसंद है। आपके और आपके बच्चे का बॉन्ड जो है उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट होना चाहिए। फिर क्या है, अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा एंड ऑडिशंस में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स फाइनली पहुंच जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। वो रैंप वॉक होगा, वो रेड कार्पेट होगा, वो खूबसूरत सी मेमोरीज होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे एंड उसके बाद फाइनली एक मॉमी बनेगी, मिर्ची मॉमी यानी कि सुपर मॉमी। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000 1896 एंट्रीज भेजने का लास्ट दिन है थर्सडे। फटाफट से पार्टिसिपेट करें एंड बस मिर्ची के प्लेटफॉर्म में अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा।

0: भाई साहब औरों का दिमाग जो है ना जरा बाद में हिलाइएगा, इस वक्त अपना शरीर ही हिला लो।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार ये जो मानव प्रजाति है ना ये बड़ी कमाल है। जरा सोचो जब भी तबीयत जो है जरा ज्यादा खराब हो, लगे कि ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक हो गया, डाइजेशन जो है खराब हो गया, शरीर में काफी हेवीनेस लग रहा है, हम देखो कैसे हिल डुल के इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, वो मोटी मोटी गोलियां खाएंगे, लेकिन ना सतर्कता के तौर पर उसके पहले जो अभियान अपनाना है ना वो ना करेंगे। चलिए इस वक्त आपकी सेहत को सुधारने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताई दूं। क्या आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वॉक After meals, it can actually help control blood sugar spikes, improve digestion and reduce heaviness after eating. तो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10 मिनट भी चलते हैं ना तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खा के तुरंत जो है आपको जिम पहुंच जाना है। मैं हल्की फुल्की वॉकिंग की बात कर रही हूँ और साइंस जो है एक ही बात कहता है, इवन स्लो वॉकिंग आफ्टर फूड हेल्प्स योर मसल्स यूज ग्लूकोज बेटर। तो अब सेहत को अपने काबू में करने की बारी आ गई है, शरीर को जरा हिलाने डुलाने की बारी आ गई है, और दिमाग को क्यों हिलाना अपनी तबियत खराब करके, है ना। स्टेरियो डिवर्ची बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: पता नहीं।
1: अरे सर इसे ढूंढो ना, कहाँ खो गया?
2: मिर्ची अंशु।
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. अगर ढूंढने की बात करूँ तो इस वक्त किसी पिटारे में कहीं खोया हुआ तुम्हारा बचपन है, उसे कभी ढूंढा है? यार कभी तो सुना होगा ना कि चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, अपने अंदर के बच्चे को ना मार देना, तो जब बाकी पुरानी बातें अभी भी याद हैं तो ये बात क्यों भूल गए? यार बचपन के दिन कितने कमाल थे, ना ही कोई स्ट्रेस, ना ही कोई डेडलाइन, ना ही कोई सीन, ना ही कोई रिप्लाई, कुछ नहीं यार, बस वो दोस्त, कार्टून्स, समर वेकेशंस, और हाँ नदी पहाड़ खेले बिना तो हम घर ना जाएंगे, एंड खुश रहने के हजार रीजंस। यार बड़े होते होते ना कहीं ना कहीं ये सारी बातें चैलेंजिंग हो चुकी हैं। यार एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे जिंदगी तुम्हें कितना भी बड़ा क्यों ना कर दे, अपने दिल को ना हमेशा बच्चा ही रहने देना। वो कहते हैं ना कि बचपन की हंसी बड़ी कमाल होती थी, बिना वजह भी खुशी बेहिसाब होती थी, अब तो सोचकर मुस्कुराना पड़ता है, पहले हर बात पे मुस्कुराहट ही जवाब होती थी। यार थोड़ा खुल के हंसे, जिंदगी को और हंसकर जिए, एंड उसके बाद बताएं लगा तो कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
6: Khat khat.
7: Who that?
6: Akbar.
7: Akbar who?
6: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
7: Khat khat. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
3: Mirchi,
4: it's hot.

0: हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन का।

0: हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके की महिलाओं की और भी ज्यादा जरूरत है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिल्म मेकर लाइक मीरा नायर। मतलब भाई, इस मोहतरमा ने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, द नेम से, क्वींस ऑफ कटवे, ऐसी ऐसी बहुत सारी फिल्में हमें दी हैं जो बिल्कुल लीक से हटकर रही हैं। इनकी जो स्टोरी लाइन रही है उसमें कोई शूशा, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं रहता है। ये लेजिट बहुत ही रॉ स्टोरीज लेकर आती है ऑन स्क्रीन। एंड वन सच अपकमिंग फिल्म ऑफ हर इज अमरी, इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड आर्ट ऑफ अमृता शेरगिल, जो एक पायनियरिंग वुमन रही है ऑफ मॉडर्न आर्ट इन इंडिया, जिनके बोल्ड एस्थेटिक्स ने उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट्स को एकदम से हिलाकर रख दिया था। बाकी आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म, क्योंकि इसमें अंजलि सिवरामन जो हैं वो अमृता शेरगिल के किरदार में नजर आएंगी, एमिली वॉटसन विल बी प्लेइंग हर मदर, जयदीप अहलावत उनके पिता का किरदार निभाएंगे और साथ ही जिम सार्ब एंड प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्टर्स भी इस मूवी में नजर आने वाले हैं। माइंड यू, प्रियंका चोपड़ा ने तो अपने पैसे भी लगाए हैं एज अ प्रोड्यूसर फॉर द मूवी। ऑल्दो फिल्म का रिलीज डेट अभी तक आउट नहीं हुआ है, बट जैसे ही पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रणवीर सिंह ने बड़ी शांति और चुपके से द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के राइट्स खरीद लिए हैं। हां जी, मां कसम फिल्म्स उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है जिसके अंडर ये काम किया गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिलॉजी जिसके राइट्स के लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, एंड द मूवी इज सेट टू गो ऑन द फ्लोर्स बाय 2028। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में रॉकिंग स्पेशल अपियरेंस के बाद गन मास्टर G9 के साथ ऑडियंस को गिफ्ट देने वाले हैं नन अदर देन इमरान हाशमी, जो इस एक्शन मसाला फिल्म में नजर आएंगे जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त। और इस मूवी में उनके साथ जिनेलिया डिसूजा एंड अपार शक्ति खुराना जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। बाकी द मेकर्स ऑफ द फिल्म आर लुकिंग फॉर अक्टूबर 9th रिलीज। जैसे ही कन्फर्म होगा कुछ आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एक कंफर्मेशन जो आ चुकी है उसकी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर अनीस बाज़मी की अपकमिंग फिल्म जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाने वाले हैं अलोंग विद विद्या बालन, इस मूवी को उसका रिलीज डेट मिल चुका है एंड इट इज 4th of December। वैसे अभी तक इस मूवी का नाम डिसाइडेड नहीं है, बट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट कॉमेडी ड्रामा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: नो द ड्रिल कि भाई आपको मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजना होता है, जिसके बाद मैं कॉल करके आपके साथ ये फिल्मी गेम खेलती हूँ। तो बहुत सारे नंबर्स ऑन अ डेली बेसिस आते हैं मुझे, तो मैंने सबसे पहले कॉल लगाया दीपक जी को। तो दीपक जी, क्या आप तैयार हैं ये गेम खेलने के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो फिल्म ब्लफ मास्टर में फीमेल लीड रोल किसका था?
1: प्रियंका।
0: प्रियंका चोपड़ा की हिंदी फिल्म जिसमें वो विलन बनी है, या बोल सकते हैं उनके कैरेक्टर का नेगेटिव शेड है?
1: ऐतराज
0: की सेकंड हीरोइन कौन थी?
1: करीना।
0: करीना कपूर की लास्ट फिल्म विद शाहिद कपूर?
1: कपूर लास्ट फिल्म उड़ता पंजाब।
0: ग्रेट। उड़ता पंजाब का एक्टर जो सिंगर भी है?
1: सिंगर दिलजीत।
0: दिलजीत दोसांझ ने किस सिंगर की बायोपिक में काम किया है?
1: चमकीला।
0: अमर सिंह चमकीला की फीमेल लीड कौन थी?
1: परिणीति।
0: परिणीति चोपड़ा की फर्स्ट फिल्म विद रणवीर सिंह?
1: रणवीर सिंह, लेडीज वर्सेस रिकी बेल।
0: क्या बात है। लेडीज वर्सेस रिकी बेल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की है?
1: उसमें कोई दूसरी हीरोइन भी थी क्या?
0: हाँ हाँ, तीन हीरोइन थी।
1: दीपानिता थी, वो याद आ रहा है, और एक और नहीं क्लिक कर रहा।
0: कोई बात नहीं, क्लिक नहीं कर रहा तो, बट मैं यहाँ पे एक चीज जरूर क्लिक करना चाहती हूँ, ये टैग फॉर यू।
2: मिर्ची फिल्म जी।
0: देखो यार, एक चीज तो क्लियर होती है इस गेम से हर दिन की, सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान का हर दूसरा इंसान कूट कूट के फिल्मची है। तो अगर आप इस गेम को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मिर्ची श्रुति के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। मेरे डीएम्स में स्लाइड इन करके अपना नंबर जरूर भेजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑन।

0: Mirchi. Mirchi. Fresh Mal.
1: Swag, style और bold energy के साथ सुनो Lipstick.

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता,
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: खटखट,
7: हू दैट?
6: जाहिर।
7: जाहिर, जाहिर हूँ।
6: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
7: खटखट, हू दैट?
2: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot. It's hot. It's hot.

0: मोची पे खेला हो बे।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: आई नो मुझे बंगाली नहीं आती, बट मुझे बड़ा मन हो रहा था यार इस तरीके से अनाउंस करने का कि वी आर प्लेइंग द बॉलीवुड गेम, जहां मैं आपको कॉल करती हूँ, कैसे आप मेरे डीएम में अपना नंबर भेजते हो वैसे। एनीवे, इस गेम की शुरुआत हुई थी दीपक जी से, जो अटक गए थे ऑन द क्वेश्चन कि भाई लेडीज वर्सेज रिकी बहल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की थी। अब इसके आगे का गेम खेलने के लिए अतुल इज ऑन द टेलीफोन लाइन, तैयार है सर? ओके, लेडीज वर्सेज रिकी बहल की किस हीरोइन ने एक वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर से शादी की है?
4: अनुष्का शर्मा।
3: अनुष्का शर्मा की डेब्यू फिल्म कौन सी थी?
4: रब ने बना दी जोड़ी।
3: ग्रेट। रब ने बना दी जोड़ी के मेल लीड का नाम क्या है?
4: शाहरुख खान।
3: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो प्राइवेट डिटेक्टिव बनते हैं?
4: बादशाह।
3: बादशाह की फीमेल लीड एक्टर का नाम?
4: ट्विंकल खन्ना।
3: ट्विंकल खन्ना की फिल्म जिसमें संजय दत्त भी थे?
4: जोड़ी नंबर वन।
3: ग्रेट। जोड़ी नंबर वन के सेकेंड मेल लीड का नाम?
4: गोविंदा।
3: गोविंदा की फिल्म विद कटरीना कैफ? इट वॉज लवली प्लेइंग द गेम विद यू। आज थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था मैंने, बट यू somehow managed. तो इसी के साथ आपको भी ये टैग दे ही देती हूँ यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
3: तो भाई आज के गेम का कोटा कंप्लीट हुआ। याद रखिए, अगर आप भी ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो मिर्ची श्रुति के नाम से मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कीजिए अपना नंबर, एंड आई विल डू द रेस्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी कभी कभी सरप्राइज दे देती है यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो जनरली हमने हिंदी फिल्मों में क्या देखा है? ग्लैमराइजेशन ऑफ स्टॉकिंग एज अ रिस्पॉन्स टू रिजेक्शन। बट थैंकफुली देर आर अ फ्यू मूवीज जिसमें हीरो को रिजेक्शन मिलने के बाद भी वो अच्छे तरीके से एक रियल मैन के जैसे उस सिचुएशन को हैंडल करता हुआ नजर आता है। वेल ही एक्सेप्ट्स इट एंड लड़की को हैरेस नहीं करता एंड ट्राइज टू मूव ऑन। अब आई नो दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज एकदम से आइडियल नहीं होती, बट आज जिन मूवीज की बात कर रही हूँ, वेल दे आर स्टिल बेटर देन मोस्ट व्हेन इट कम्स टू शोकेसिंग हीरोज हैंडलिंग रिजेक्शन। तो आज पांच का पंच की लिस्ट में नंबर वन पे आई विल टॉक अबाउट द मूवी कभी हाँ कभी ना। 1994 में आई थी ये फिल्म, डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने एंड it was one of the fine romantic dramas to come out of Bollywood jisme hero was flawed but relatable and sabse important baat ki by the end of the movie he learned ki wo apna pyar kisi pe force nahi kar sakta. Yes, usne koshish ki ki wo apne lady love ko woo kare, but jitne bhi techniques apnaye usne wo sare actions were not rewarded by love and uski journey resulted in his own growth. Quite progressive, right? So, ऐसे और कुछ movies हैं जिनकी बात मैं करने वाली हूँ, but in a while, अभी के लिए you enjoy the songs right here on Mirchi, श्रुति आपके साथ है।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Water से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
3: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
2: ठीक है सर.
3: 5 सेकंड जल्दी.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
2: हेलो.
3: हेलो.
2: हेलो.
3: प्लीज जल्दी बता दो.
2: सॉरी, कोई कस्टमर के लाए हेलो.
3: हेलो.
2: बात की
3: होल्ड नहीं कर सकता. हेलो.
5: हाँ जी सर.
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड.
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
3: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर. इग्निशन ऑफ कर दो.
3: इग्निशन. एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
5: हाँ जी.
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी.
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
5: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई.
2: Yes.
4: मैडम क्या नाम है आपका?
2: दिव्या.
4: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
2: Oh, I was so dense, I thought about what happened.
6: कुकड़ूंगू. मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष.
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: आपको नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस होने चाहिए?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं मतलब हम सदियों से देखते आ रहे हैं कि मूवी में एक हीरो हीरोइन को स्टॉक करता है, मतलब उसे छेड़ता है, उसके बाद फिर गाने वाने होते हैं और फिर लड़की जो है वो मान जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर के जैसे दिखाया जाता है इन मूवीज, बट अगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो ऑफकोर्स आपको पसंद नहीं आएगा यार। एनीवे, थैंकफुली कुछ मूवीज ऐसी हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विच हैव एक्चुअली शोन कि जो हीरो है ही हैज बिन रिजेक्टेड एंड उसने उस चीज को बड़े अच्छे से एक रियल मैन के जैसे हैंडल किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और लड़की को हैरेस नहीं किया है और मूव ऑन करने की कोशिश की है। वेल, आज पांच का पंच की लिस्ट में कुछ ऐसी ही मूवीज की बात हो रही है जिसमें नंबर वन पे आई टॉक्ड अबाउट द फिल्म कभी हाँ कभी ना, नंबर टू पे आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म एक मैं और एक तू। वेल, ये फिल्म शकुन बत्रा की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी इन द इंडस्ट्री। मूवी में लीड रोल में नजर आए इमरान खान एंड करीना कपूर एंड इट वॉज अ लव स्टोरी दैट टॉक्ड अबाउट एक तरफा प्यार, लेकिन उसमें ना कोई थिएट्रिक्स या फिर मेलोड्रामा नहीं था। सो देयर इज दिस कैरेक्टर राहुल विच इज अ परफेक्ट लीड जो नॉन प्रॉब्लमेटिक है, और ऐसा इसलिए बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स की रायमा उसके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकती जैसे वो चाहता है, और इसलिए राहुल एक्सेप्ट करता है कि वो रायमा की जिंदगी में उसका फ्रेंड बन के रहेगा विदाउट गिल्टिंग हर इनटू चेंजिंग हर माइंड। सो दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल, राइट? वेल, ऐसी एक और मूवी है विच इज ऑन द लिस्ट एंड ये है नंबर तीन पे लक्ष्य, डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। द मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 2004। यस यस यस, आई नो कि फिल्म में करण अल्टीमेटली रोमिला से मिल जाता है बाय द एंड, बट द वे ही डेल्ट विद द सिचुएशन, मतलब रोमिला ने जो उसको डंप किया था वो बड़ा ही ऑसम था। वो लड़की को लैश आउट नहीं करता और ना ही उसे ब्लेम करता है, बट ही रादर डिसाइड्स टू ग्रो। इन शॉर्ट, वो रियलाइज करता है कि वो जिंदगी भर एक मैन चाइल्ड बन के नहीं रह सकता। समथिंग रेयरली फाउंड इन हिंदी सिनेमा, राइट? तो बाबू मोशाय, इस लिस्ट में अभी और भी कुछ मूवीज की बात होने वाली है, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। जस्ट एंजॉय द सॉन्ग्स। श्रुति विल बी राइट बैक।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: तो नहीं।
1: लीक से जरा हटके मूवीज अच्छी नहीं लगती।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: और अगर बात करूँ हिंदी सिनेमा में लड़का लड़की के प्यार की, तो उसकी शुरुआत तो स्टॉकिंग या फिर छेड़छाड़ से होती है नहीं, और इसको इतने अच्छे तरीके से ग्लैमराइज किया जाता है फिल्मों में कि क्या ही बताएं। बट थैंकफुली देर आर मूवीज वेर द हीरो इज रिजेक्टेड बाय द लव इंटरेस्ट, बट वो उसको एक रियल मैन के जैसे हैंडल करता है, ही एक्सेप्ट्स इट, लड़की को हैरेस नहीं करता एंड ट्राइज टू मूव ऑन। अब ये मूवीज एकदम से आइडियल नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट दे आर स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ इट, राइट? तो आज के पांच का पंच की लिस्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट सच फिल्म्स, जिसमें नंबर वन पे आई टॉक्ड अबाउट कभी हाँ कभी ना, नंबर दो पे एक मैं और एक तू, नंबर तीन पे लक्ष्य, अब आ रही है नंबर चार पे बात करने की फिल्म बर्फी के बारे में। सो इस मूवी से एक चीज तो समझ आती है दैट नॉट ऑल मेन टर्न टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऑल्दो बर्फी को लास्ट में झिलमिल मिल जाती है एज हिज लव इंटरेस्ट इन द मूवी, बट उसको उसका हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ता है, वो श्रुति के साथ जो उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है, जिसके बाद ही डिड नॉट टर्न हिमसेल्फ इनटू अ हार्डेंड सोल जो शराब में डूब गया, अनलाइक यू नो कबीर सिंह। रादर उसने अपने इस हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट किया और ये एक्सेप्ट किया कि श्रुति एक डिफरेंट लाइफ चुन सकती है एंड कंटिन्यू टू केयर फॉर झिलमिल एंड अल्टीमेटली फॉल इन लव विद हर। Quite interesting, right? चलो लिस्ट में जरा आगे बढ़ते हैं, नंबर पांच पे बात करते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है के बारे में। Well, फिल्म में सलमान, जिसके बाद ही डिड नॉट टर्न हिमसेल्फ इनटू अ हार्डेंड सोल जो शराब में डूब गया, अनलाइक यू नो कबीर सिंह। रादर उसने अपने इस हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट किया और ये एक्सेप्ट किया कि श्रुति एक डिफरेंट लाइफ चुन सकती है एंड कंटिन्यू टू केयर फॉर झिलमिल एंड अल्टीमेटली फॉल इन लव विद हर। Quite interesting, right? Chalo.

not be the leading hero, but he's left at the altar literally. ये देखा आपने कितना दर्द हुआ होगा उसको यार. हाँ आई नो ये सब मेलोड्रामा था. यस मूवी में और भी बहुत सारे इश्यूज थे, बट अमन ने जिस अमेजिंग तरीके से उस सिचुएशन को समझा, ये समझा दैट इट्स नॉट ओके टू फोर्स समवन टू मैरी यू अगर वो आपसे प्यार नहीं करता. It was really sweet, isn't it? तो बाबू मोशाय, मेरे इस पांच का पंच की लिस्ट में आज बस इतनी ही मूवीज की बातें होंगी. आप भी इस लिस्ट में और कुछ मूवीज ऐड करना चाहते हैं, then feel free to do that. मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. In the meanwhile, enjoy the songs right here on मिर्ची.

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: कौन है?
5: अज्जू।
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। रणवीर सिंह ने बड़ी शांति और चुपके से दी मॉटल्स ऑफ मेलुहा के राइट्स खरीद लिए हैं। हां जी, मां कसम फिल्म्स उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है जिसके अंडर ये काम किया गया है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिलॉजी जिसके राइट्स के लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं, एंड द मूवी इज सेट टू गो ऑन द फ्लोर्स बाय 2028। बैट्स ऑफ बॉलीवुड में रॉकिंग स्पेशल अपियरेंस के बाद गन मास्टर G9 के साथ ऑडियंस को गिफ्ट देने वाले हैं नन अदर देन इमरान हाशमी, जो इस एक्शन मसाला फिल्म में नजर आएंगे जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त। और इस मूवी में उनके साथ जिनेलिया डिसूजा एंड अपार शक्ति खुराना जैसे एक्टर्स भी नजर आने वाले हैं। बाकी द मेकर्स ऑफ द फिल्म आर लुकिंग फॉर अक्टूबर 9th रिलीज। जैसे ही कन्फर्म होगा कुछ आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एक कंफर्मेशन जो आ चुकी है उसकी बात कर लेते हैं। डायरेक्टर अनीस बाजमी की अपकमिंग फिल्म जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल निभाने वाले हैं अलोंग विद विद्या बालन, इस मूवी को उसका रिलीज डेट मिल चुका है एंड इट इज 4th of December। वैसे अभी तक इस मूवी का नाम डिसाइडेड नहीं है, बट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एन आउट एंड आउट कॉमेडी ड्रामा। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, ₹1।

0: देखो जो दोस्त यार कहा करते थे वो बात अब सच हो ही जाएगी।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे बस यही वाली कि तुम्हारे घर तो ऑमलेट बनाने के लिए गैस की जरूरत ही ना पड़ती होगी। भाई ऑमलेट क्या बनाए, यहाँ पे इंसान की भुर्जी बन रही है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: हाँ जी, सूरज चाचू ने कोई ऐसा ही कोहराम हमारी जिंदगी में मचाया हुआ है। इतना ही कहना चाहूंगी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को आप देखने की कोशिश करेंगे सो इट इज अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खूब ख्याल रखें, कल ही जन दिमाग की ठंडक के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन वर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।
4: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: porque...
1: हेलो
2: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
1: बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे? आप
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं। आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार। 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
1: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई। बहुत दूर था,
1: बहुत दूर था सर
2: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए। 3 लाठी रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: नहीं
1: तो...
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार। क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई। जल्दी आ जाओ भाई यार।
1: नहीं मैं आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप। हैं मेरे को तमीज सिखा रहा? मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें 3 लाठियां तुम्हारे नाम की है।
1: वो बहुत दूर था,
2: बहुत दूर था।
1: नाराज
2: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।
4: ऑलराइट सी, इट हर्ट्स।

हीरोइन को पाने की चाहत में हीरो ने अपनी इच्छा को साइडलाइन कर दिया। बॉलीपीडिया कितने आदमी थे भाई, याद आया? मैं बात कर रही हूँ बाद मूवी शोले, जो 1975 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र पाजी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। एंड यू नो व्हाट, इस मूवी की फाइनल स्क्रिप्ट सुनने के बाद धर्मेंद्र जो है वो ठाकुर का रोल करना चाहते थे, बिकॉज ही न्यू कि ठाकुर और गब्बर जो है वो इस मूवी के स्टोरी के सेंट्रल पॉइंट्स हैं। बट फिर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने क्लेवरली धर्मेंद्र पाजी को कन्विंस किया कि भाई देख ले, अगर तू ऐसा करेगा तो वीरू का किरदार मिलेगा संजीव कुमार को, और मूवी के एंड में संजीव कुमार हेमा मालिनी को लेके चले जाएंगे। माइंड यू, धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी का रोमांस उस वक्त नया नया था, और उसके पहले संजीव कुमार ने ऑलरेडी हेमा मालिनी को एक बार प्रपोज कर रखा था। तो भाई इन सारी चीजों के मद्देनजर धर्मेंद्र पाजी ने अपने वीरू वाले कैरेक्टर के साथ सेटिस्फेक्शन दिखाई और ठाकुर के कैरेक्टर को संजीव कुमार के पास ही छोड़ दिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको भी कोई ट्रिविया जाननी हो तो उसका नाम मुझे बताओ। आई विल डू द होमवर्क फॉर यू। कनेक्ट करने के लिए MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलो। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सीरीज देखना भी एक आर्ट होता है, आर्ट।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं
0: और इस आर्ट को निभाने वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट नजर आते हैं, जिसमें दो कैटेगरीज आज डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट आर द पीपल जो एक नई सीरीज देखने की शुरुआत अगर करते हैं तो उसको देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो बिल्डअप करें उनके ऊपर, इससे पहले ही वो उसको भूल जाते हैं। मतलब आज हमने कोई एक सीरीज का एक एपिसोड देख लिया, लेकिन अब हम भूल चुके हैं कि भाई ये सीरीज कौन सी थी, और हम किसी दूसरी सीरीज या दूसरी फिल्म पे हॉप इन कर जाते हैं। बट दूसरी प्रजाति वाले जो हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स की चुल है इनके अंदर। एक तो सबसे पहले ये एक एक करके कोई एपिसोड नहीं देखते किसी सीरीज की, एक बार में सारे एपिसोड आ जाते हैं फिर ये उसको बिंज वॉच करते हैं। एंड ये वो कीड़े हैं सीरीज देखने वाले कि भाई ठीक है कोई नई सीरीज आ रही है तो वो तो देखेंगे जरूर, बट साथ में पैरेलली एक और सीरीज चल रही होती है इनकी। जैसे मैंने अभी सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 देख लिया, बट एट द सेम टाइम पैरेलली आई एम वॉचिंग द मेंटलिस्ट एज वेल। तो बताइए आप इन दोनों में से किस कैटेगरी के हैं। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। Stay tuned, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

बात करें एक्सचेंज रेट्स की, तो भाई एक कतरी रियाल इंडियन करेंसी में 26.41, एक कतरी रियाल लंकन रुपीज में 91.69, एक कतरी रियाल इक्वल्स टू बांग्लादेशी टका 33.65, बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज में तो 42.20, और एक कतरी रियाल इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज 76.90। बस ये था पैसों का हालचाल, बोले तो झकास पैसे की बात।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know, she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो, शर्म.
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.

0: 90s की पूरी दुनिया आजकल ना हमारी जेब में है। कैसे? अरे वही तो अब आप सुनने वाले हो।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. अब ये देखो ना यार, एक हैंडीकैम, स्टीरियो, सीडी प्लेयर, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, वॉकमैन और भी ना जाने कितने ही ऐसे गैजेट्स अब हमारी जेब में रहते हैं, जिसे हम फोन कहते हैं। धीरे धीरे ये इनसिक्योर मोबाइल फोन्स ने कब हमारी जिंदगी पर राज करना शुरू कर दिया, ये शिफ्ट तो हमें समझ में ही नहीं आया। बट यही फोन आजकल कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने लगा हमारी लाइफ में। रिसेंटली यू नो व्हाट, आई केम अक्रॉस अ स्टोरी व्हिच सेड कि एक टीनेजर ने अपना एक ऐसा अकाउंट बनाया है सोशल मीडिया पर, जहां पर वो आईफोन लेने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है। ही इज कलेक्टिंग फंड्स सो दैट ही कैन बाय एन एक्सपेंसिव फोन, व्हिच इज अ रियलाइजेशन कि फोन मोर देन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दीज गैजेट्स, जो कि इस्तेमाल की चीजें हैं, ये तो स्टेटस सिंबल सा बन गया है और हम इस स्टेटस सिंबल के गुलाम। हालांकि गैजेट्स को हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो सोसाइटी के नाम पर गैजेट्स हमें यूज कर रहे हैं। मेरा यही सवाल है आपसे कि आपके लिए एक फोन एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक गैजेट? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। एंड अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: टू टू जा फोर.
4: वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब है नहीं
4: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है? और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माँ भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखी थी वो मेरे मतलब की मूवी थी नहीं यार, तड़ी पार था उस मूवी का नाम, मिथुन और पूजा भट्ट की। मुझे कोई मजा नहीं आया पिक्चर में, मैं सो भी गई। लेकिन फिर मैंने ना इस वाली बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मेरे हिसाब से जो पहली मूवी मैंने थिएटर में देखकर एंजॉय करी थी, दैट वाज जुरासिक पार्क।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे आज भी याद है वो दिन जब हमारी मामी हम सब बच्चों को ट्रीट पर लेकर गई थी और वो हमें प्लाजा में मूवी देखने के लिए लेकर गई थी। बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था वो, अलग बात है कि आज के दौर पे उसकी ऐसी की तैसी हो रखी है। लेकिन आज मैं आपको जुरासिक पार्क के पर्दे वाली बात नहीं बताने वाली, बिहाइंड द पर्दा यानी बिहाइंड द सीन्स वाली बात VCR पे चलेगी। वेल, वो जो जुरासिक पार्क में ये डायनासोर की जो आवाजें हुआ करती थी, ये आपको पता है कैसे बनाई गई थी यार? उस टाइम पर ऐसा थोड़ी था कि YouTube खोला, SFX निकाला और चिपका दिया। क्रिएट की गई थी ये आवाजें, लेकिन इतनी भयानक आवाजें किसने निकाली होंगी? वेल, डेफिनेटली किसी इंसान ने नहीं निकाली थी। इस फिल्म में वो जो टायरेनोसॉरस था उसकी आवाज निकालने के लिए मिक्सचर बनाया गया था आवाजों का। किस किस की आवाज थी? डॉग की, पेंगुइन की, शेर की, एलिगेटर की, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ बेबी एलिफेंट। तो आपको बेबी एलिफेंट सुनते के साथ आई एम श्योर एक ख्याल आया होगा कि जब डायनासोर इस फिल्म के अंदर चिल्लाता है तो एलिफेंट की आवाज भी आती है। वेल, वो इसी वजह से आती है क्योंकि उसमें एलिफेंट की आवाज ही थी। इनफैक्ट अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज आवाजें, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट वाज एलिफेंट की आवाज। जुरासिक पार्क के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है जब जुरासिक पार्क शूट हो रही थी तो उन डायनासोर्स के बीच एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी थी.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड वेल, हुआ ये था कि जो टीरेक्स बनाया गया था, ऑफ कोर्स दैट वाज अ डमी टीरेक्स एंड नॉट ऑफ कोर्स द रियल टीरेक्स. तो जो टीरेक्स था वो बेचारा था तो एक मशीन. एंड होता ये था कि ओकेजनली वो मैल फंक्शन कर जाया करता था. लेकिन जब पहली बार ये टीरेक्स मैल फंक्शन हुआ, तब सारी टीम और क्रू जो थी मूवी की वो खाना खा रही थी और एकदम से टीरेक्स के चीखने की आवाज आई, जिसकी वजह से हाल ये हुआ कि लोग चिल्लाते हुए भागे और लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, ये टीरेक्स जो है ये जिंदा हो गया है, और बहुत ही अफरा तफरी मच गई थी. लेटर ऑन लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये एक मैल फंक्शनिंग है एंड दैट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रेन्स. वो टीरेक्स भीगता था, उसकी वजह से उसके अंदर मैल फंक्शनिंग हो गई, क्योंकि था तो वो एक मशीन ही. लेकिन तब भी हाल ये था कि कभी कभी जब टीरेक्स अपने आप बैठे बैठे आवाज निकालने लग जाता था ना बिना चालू किए, तो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ये हमें एक सर्टेन टाइम पर पता तो था, लेकिन इसका एहसास इस मोबाइल नेटवर्क के एड ने करवाया था बॉस।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, दोस्त तो कई होते हैं, लेकिन हर दोस्त की अपनी एक खासियत होती है और हर दोस्त की हमारी दोस्ती में अपनी ही पहचान होती है। इस एड ने ना इस बात को बड़ी खूबसूरती से बताया था। और पता है, आज जब मैंने इस एड को सुना ना, तो मुझे मेरे एक सवाल का शायद जवाब मिल गया है। हमने बचपन से सुना है अबाउट द टर्म बेस्ट फ्रेंड, एंड देयर केम अ टाइम जब मैं इसे क्वेश्चन करने लगी थी कि व्हाई डू वी से बेस्ट फ्रेंड। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे हमारे जो दोस्त हैं दे आर नॉट ग्रेट बिकॉज वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एंड यू नो, मेरी डिक्शनरी में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई डिड नॉट कैरी द वर्ड बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज दोस्त तो मेरा वो भी अच्छा है ना जो मुझे रैंडमली एक कॉफी शॉप पर मिला और हमने गप्पे मारनी शुरू कर दी और आज एक दूसरे के फैमिली फंक्शन का हिस्सा होते हैं। दोस्त तो मेरी वो भी बहुत अच्छी थी जो मेरे ट्यूशन पर आती थी और हम ट्यूशन के बाद अक्सर चाट खाने जाते थे, गप्पे मारा करते थे, गॉसिप किया करते थे, लेकिन बियॉन्ड ट्यूशन एंड चार्ट डेट्स हमारा कभी मिलना ही नहीं होता था। वही तो खूबसूरत बात है इस एड में, जो कि कही गई है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। और इसी एड ने ना मुझे मेरे सालों से अटके हुए सवाल का जवाब भी दे दिया कि आई एम फाइन इफ आई डोंट वांट टू बिलीव इन द कल्चर ऑफ वन बेस्ट फ्रेंड एंड रादर हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स। क्या बोलते हो? स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Burga, burga! ¡La vida es para la burga! ¡Mirchi, burga!
1: ¡Hello!
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया ये।
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूं? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है, हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जारी है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर, तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण एंड सुदेश भोसले की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म कभी खुशी कभी गम। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पता है मैं क्या सोचा करती थी कि सुदेश भोसले जो है ये आशा भोसले के रिलेटिव है। बड़ी हुई तो पता लगा कि सिर्फ उनका सरनेम भोसले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आशा भोसले के रिलेटिव हो गए यार। उनका दूर दूर तक आशा भोसले जी से कोई लेना देना नहीं है। वही वाली बात है ना कि बचपन में सैफ, आमिर, सलमान, शाहरुख इनको भी मैं भाई समझती थी क्योंकि सारे के सारे खान है ना। भूला बचपन यार, कैसे से थे हम नहीं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, बड़े होते होते काफी स्मार्ट हो गए, तभी तो मान ना मान करो गानों की पहचान में गानों की पहचान कर जाते हैं। तो जी, आज के वो दो गाने जो कि मैं आपके लिए मिक्स करके चलाने वाली हूँ और आपको पहचानना होगा कि ये दो गानों की धुनें कौन सी हैं फ्रॉम 90s या अर्ली 2000, वो है कुछ यू।

बस अब आपको इतना करना है कि डीएम कर देना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हेरा फेरी फिल्म बड़ी दमदार और मजेदार थी यार, लेकिन इसका एक गाना है उसके अंदर भी हेरा फेरी हुई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया एक गाना था, वो कौन सा है? ये वाला। अच्छा गाना था यार, इसका म्यूजिक काफी डिफरेंट था। नहीं, वेल डिफरेंट इसलिए भी था क्योंकि ये म्यूजिक कहीं से उठाया गया था। वेल बेसिकली इस गाने की म्यूजिक इज एक्चुअली कॉपीड फ्रॉम रिटर्न ऑफ द मैक करके एक म्यूजिक वीडियो है, और इस म्यूजिक वीडियो के सिंगर हैं मार्क मॉरिसन, विच इज एन इंग्लिश सॉन्ग विच गोज दिस वे। And no points for guessing कि ये गाना किसका कंपोज किया गया। Of course, अन्नू जी। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए। कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: खटखट,
4: कौन है?
3: दवे।
4: दवे कौन?
3: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
4: खटखट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मेरे सामान में से क्या मिला मुझे? लाइब्रेरी कार्ड।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था यार। इट वॉज लाइक अ यादों की हवा का झोंका जब मुझे मेरे स्कूल लाइब्रेरी का कार्ड मिला। मुझे ना बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता था जब मैं एक बुक इशू करवाने के लिए जाया करती थी। मतलब ऐसा होता था कि आई हैड टू शो द कार्ड और फिर उसमें एंट्री होती थी, तो ऐसा लगता था बड़ा भाव मिलता है यार इन सारी चीजों को करके, और बहुत ही बड़ा बड़ा सा फील होता था। वो अलग बात है कि आज बड़ा बड़ा फील होने के बाद, इनफैक्ट फील क्या होने के बाद, बड़ा बड़ा होने के बाद लगता है कि काश हम छोटे ही अच्छे थे। बट वही वाली बात है ना यार, बचपन में शौक था बड़ा होने का तो हो गए। और वो शांति वो जो लाइब्रेरी में थी ना, वो तो खुद शांति सीरियल में भी नहीं थी। ये उसी तरह का सुकून है जो शायद हम पहाड़ों में ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी भीड़ मिल जाती है। नाउ आई रियलाइज्ड कि भाई एक लाइब्रेरी गए हुए कितना जमाना हो गया है। लेकिन आज भी अगर मुझे कोई लाइब्रेरी जाना होगा ना, तो सबसे पहले तो मुझे लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो जगह है जो इतनी आउट ऑफ टच हो गई है ना कि इसके वेयर अबाउट्स पता करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो जस्ट लाइक एनी अदर स्कूल फ्रेंड जिससे हम स्कूल में और कॉलेज में मिले थे और उसके बाद फिर मुलाकात ही ना हुई, लेकिन फिर भी उसे तो फेसबुक पे भी ढूंढ लिया जा सकता है। लाइब्रेरी के लिए मशक्कत थोड़ी ज्यादा रहेगी। अभी गूगल करके देखती हूँ और सोच रही हूँ कि इसी हफ्ते एक चक्कर लगा आया हूँ। जब भी जाऊंगी ना तो डेफिनेटली आपके साथ इस किस्से को शेयर करूंगी। बाकी आप मुझे बताओ, लास्ट आपका कब जाना हुआ था किसी लाइब्रेरी में? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burga, burga. La vie va la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Quarter से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी.
2: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
1: ठीक है sir.
2: 5 seconds जल्दी.
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो.
1: कोई कस्टमर के लाए. हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता. हेलो,
4: हाँ जी सर.
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड.
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो.
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
4: हाँ जी.
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है. एक सेकंड कुछ और, ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी.
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
4: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
2: एक सेकंड रुकिए. आए.
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई.
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या.
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
1: I was so tense, I thought, what happened?
0: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot. Yep,
5: तो सिर्फ छोरे करें.
6: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Pyare Poppins.
2: Yaadon ko chitthi.
1: तुम्हें देखे जमाना हो गया, लेकिन यादें आज भी ताजा है। बचपन की जेबों में खनकती तुम्हारी गोलियों की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। तुम सिर्फ एक टॉफी नहीं थी यार, तुम तो हमारे बचपन की रेनबो थी। और हर रंग में अलग टेस्ट हुआ करता था, हर गोली में अलग कहानी हुआ करती थी। और ये गोलियों के रंग जो थे ना, अगर हम टिपी टिपी टॉप खेल रहे होते थे और तुम जेब में पड़ी होती थी तो इंसान जीत जाए, इतने रंग थे तुम्हारे पास। स्कूल से लौटते वक्त 50 पैसे या 1 रुपए में तुम्हें खरीदना किसी खजाने को पाने जैसा लगता था। दोस्तों के साथ रंग चुनकर खाना और फिर बहस करना कि कौन सा रंग सबसे अच्छा है, और फिर ये पूछना कि जुबान पर तुम्हारा रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। वो छोटे छोटे पल भी कितने बड़े लगते थे यार उस टाइम पर। तुम्हारे जैसे मीठे दोस्त अब कहाँ मिलते हैं? अब ना वो दुकानदार अंकल है जो मुस्कुराकर पॉपिंस की स्ट्रिप पकड़ाते थे, ना वो बेफिक्री है जो तुम्हें खाते वक्त महसूस होती थी। तुमने सिर्फ मिठास नहीं दी, तुमने रिश्तों को भी रंगीन बनाया। कभी कभी आज भी किसी दुकान में तुम्हारी एक झलक दिख जाती है ना, तो दिल मचल उठता है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो और मैं फिर वही नन्ही सी बच्ची बन गई, इंक्विजिटिव, खुश और तुम्हारे टेस्ट में खोई हुई। थैंक यू पॉपिंस, हमारे बचपन को इतना रंगीन और मीठा बनाने के लिए। और तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी मिठास जो बचपन में चखी थी आजकल रेडियो मिर्ची पर घुल रही हूं। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा मिर्ची सारा के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे इंसानों की पर्सनालिटी होती है, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से आवाज में भी एक बात होती है. हर एक आवाज की अपनी ही एक पहचान होती है. एंड सेम इज विद अदनान समी की आवाज. उनकी आवाज बिल्कुल हटके है, जो कहीं पर भी सुनो तो पहचान में आ जाती है. एंड कैसेट के साइड बी का गाना इज सलाम ए इश्क से अदनान समी की आवाज भी.
0: मिर्ची 90s कैसेट.
1: दिल क्या करे, ओए होए, ये गाना इतना प्यारा गाना है ना कि आज भी जब कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ग्लूमी फील हो रहा होता है, या फिर लो फील हो रहा होता है, दिन बड़ा मजेदार नहीं जा रहा होता है, ये गाना चला देती हूँ मैं. इस गाने की बीट ही इतनी बढ़िया है यार. लेकिन जब इस गाने की बीट से थोड़ा सा खिसक कर आप लिरिक्स की पटरी पर आओगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ बीट्स ही नहीं, इस गाने की लिरिक्स भी बहुत ही कमाल है. इस गाने में सिर्फ प्यार नहीं, प्यार के सिम्टम्स बता रखे हैं यार. जहां पर ये कहा गया है कि भाई सीली सीली तपती रातों में जलता हूं मैं बरसातों में, डूबा डूबा हर पल यादों में दिल क्या करे. यही तो साइन है मोहब्बत के कि रातें भले ही सीली सीली हो लेकिन तपती रहती हैं. बारिश हो रही है लेकिन इंसान जलता रहता है, क्योंकि यार अकेले बारिश का मजा कहाँ जब तक वो साथ में ना हो. कहते हैं कि अपने में ही खोया रहता हूँ, कहना है कुछ कुछ कहता हूँ, और पेन अजब सा सहता हूँ, दिल क्या करे. और ये जो अगली दो लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल सच हैं. हमें पता नहीं लगता कि कब किसी की आंखों में झांक कर उसकी बातों को सुनते हुए हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं. वो अगला इंसान जो है ना, वो हमें पसंद आने लग जाता है. ये एक जादू सा ही होता है यार. और लोग कहते हैं कि किसी की पर्सनालिटी देखने के बाद ही सबको प्यार होता है, फलाना ढिमाका. लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पर्सनालिटी, लुक्स, कपड़े, फलाना ढिमाका, ये सब देखने से प्यार नहीं होता बॉस. जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो और जब आप उस इंसान की आंखों में झांक कर देख लेते हो और आंखों को समझ लेते हो और आपको ये समझ में आ जाता है कि इस इंसान की आंखें मुझसे बातें करती हैं, तो आपको कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है दिल में. नोटिस तो आपने भी किया होगा. याद आ रहा है उस इंसान का नाम? समझ जाओ, यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाने की बारी आ चुकी है. अभी के लिए जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिल ही जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कट कट।
5: Who that?
4: जस्सी।
5: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
4: जस्सी who has come आंटी जी?
5: कट कट। Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए चार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

प्याली हो और उसको पिलाने वाली हो। जी हाँ, आप गरम चाय की प्याली तैयार रखिए क्योंकि आ चुकी है आपकी शाम को शानदार बनाने। और हाल ही में ये सोच रही थी कि बचपन में हम लोगों को पूछा जाता था कि भैया बड़े होकर क्या बनना चाहते, क्या एम है, तो मैं बोलती थी हमेशा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं आरजे हूँ। देखिए, डेस्टिनी को ना कुछ और ही मंजूर था और वो बहुत ही अच्छा कुछ मंजूर था, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि पेरेंट्स को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि आप ये बनिए या वो बनिए, उनकी जो मर्जी है ना, उनको पंख फैलाने दीजिए और इंजॉय करने दीजिए अपनी लाइफ। मैं तो यही कहूँगी। लेकिन इसी से ना एक मुझे एक ऐसी हस्ती याद आती है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, जिन्होंने अपनी शुरुआत की मेडिकल स्टूडेंट से। जी हाँ, मेडिकल उन्होंने लिया, मेडिकल स्टूडेंट रही वो, एंड उनके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता, मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जी हाँ, अभी हाल ही में उनका गाना भी आया है हनी सिंह जी के साथ। जी हाँ, उनका नाम है मानुषी चिल्लर। जी हाँ, सही पकड़े हैं। मानुषी चिल्लर जी ने काफ़ी स्ट्रगल तो नहीं करने को मिला उनको, लेकिन मुझे लगता है वो खुद हैरान होती होगी अपनी डेस्टिनी पे कि किस तरीके से पासा पलटा और उन्होंने अपना एकदम जो उनका स्ट्रीम था मेडिकल से बॉलीवुड, क्या मजेदार चेंज मिला उनको। बाकी ऐसी बहुत सारी मस्ती भरी बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची की शकोली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: ओ यारो ईद मुबारक, ओ यारो ईद मुबारक, ईद का समय आ गया है और सबसे बेस्ट पार्ट होता है ना ईदी मिलना। जी हाँ, अगर आपको भी ईदी मिलती है और आप भी बच्चों को ईदी देते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट न्यूज लेके आई हूँ। जी हाँ, ईदी एटीएम्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं 10 बड़ी लोकेशंस पे कतर में। और अगर आप ईदी अपने बच्चों को या अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को या कजिन्स को देना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू दे सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उस एटीएम से 10 रियाल भी निकाल सकते हैं, 20 रियाल भी निकाल सकते हैं, तो यू विल गेट अ हासिल फ्री कैश देयर। एंड ये मतलब एक ट्रेडिशन फॉलो करता है कि भाई जो एक ट्रेडिशन पहले से चलता आ रहा है कि बच्चों को ईदी देनी है, जितनी मर्जी आपकी श्रद्धा है उतनी देनी है, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। एंड ये बड़ा आसान कर देता है आपकी ईदी डिस्ट्रीब्यूशन को। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे आप?
2: जी बैठे थे।
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ के लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
2: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई? बहुत दूर थे,
2: बहुत दूर था सर
3: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: मैं नहीं,
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें 3 लाठियां तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तुम अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
1: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: देखिए किताब भी तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, लेकिन ये बुक फेयर अगर आपने मिस किया तो कुछ तो मिस हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने लाइफ में नहीं देखी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि एक रेयर गोल्ड इंक ऑटोमैन सुल्तानिक कुरान आपको देखने को मिलेगी, जो अराउंड 1 मिलियन कतरी रियाल है एंड इट्स 600 इयर्स ओल्ड। भाई काबिली तारीफ है यार, इतनी पुरानी बुक संभालना ही बहुत बड़ी बात है और आपको ये यहाँ पे देखने को मिल रही है। यार 35th जो हमारा दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है उसका एक मेन अट्रैक्शन है, और अगर आप जा रहे हैं ना तो ये ज़रूर देख के आइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। मिर्ची वन कतर पे ज़रूर बताइएगा एंड ऑल्सो मिर्ची ईशा पे भी आप बता सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन ये गोल्ड इंक ऑटोमैन जो सुल्तानिक कुरान है ये ज़रूर देख के आइए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: कट।
7: अबे कौन है?
6: उत्तपा।
7: उत्तपा कौन?
6: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
7: खट खट, हु दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

जानते हैं पैसे का हाल चाल आईपी के साथ। बात करें एक कतरी रियाल इंडियन रुपीस में तो 26.50, और बात करें अगर एक कतरी रियाल लंगन रुपीस में दैट इज 92.91, एक कतरी रियाल बांग्लादेशी टका में बात करें तो 33.65, एंड बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीस में दैट इज 42.41, एंड वन कतरी रियाल अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 76.90। ये हाल चाल था पैसे का।

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 5, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
2: मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: टू टू जा फोर.
4: वेट सर वेट,
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा okay. आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं.
4: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं?
4: सर वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. सर पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट की बात करें तो भाई 37 डिग्री सनी रहने वाला है मॉर्निंग में एंड नाइट में 29 डिग्री पारा हो जाएगा। लेकिन बात करें ये हवाओं का तो भाई बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, तो भाई मेरे जैसे कमजोर इंसान थोड़ा सा संभल के चलिएगा और बाहर ना ही निकलेगा तो बेटर है, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.7।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: हवा में उड़ता जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का। भाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारी कतर की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बोल रही है। जी हाँ, क्योंकि कतर में हो रही हैं ऐसी एक्टिविटीज, यानी कि बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं और हाई टाइड्स होने वाली हैं, तो भाई उड़ेगा ही दुपट्टा, साथ में आप भी उड़ सकते हो, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। कुछ वार्निंग्स आई हैं हमारी डिपार्टमेंट से, एंड ऑल्सो दे आर सेइंग कि कुछ जो मरीन एक्टिविटीज़ हैं वो आप थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए अंटिल वीकेंड, क्योंकि आज से लेके वीकेंड तक वेव की हाइट जो मानी जा रही है दैट इज 3 to 6 feet ऊंची हो सकती है, तो इसीलिए स्टे सेफ और ज़्यादा मरीन एक्टिविटीज ना करिए, इंडोर्स ज़्यादा रहिए, ज़्यादा सी के पास मत जाइए, एंड एंजॉय करिए अपने वीकेंड को, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मिर्ची स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
5: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
4: क्या होता?
5: रोड साइड रोमियो।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
1: अभी कॉल करें 3100813। हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है, गो एंड पार्टनर विद मिर्ची 1 कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हो और बहुत मजेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM टू 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज्ड, सो थर्सडे 9 AM टू 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM टू 7 PM. तो जाना का 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा, अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.7.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे.
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है.
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: Bollywood Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who there?
5: Whom are you?
6: Whom are you who?
5: Are, whom are you looking for, madam?
6: Cut, cut. Who there?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इस समय बच्चे एक ही गाना गा रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भाई इसी का इंतजार होता है बच्चों को, या तो जंपिंग जोन में भेज दो या कहीं प्लेइंग एरिया में, बस ये बच्चों को यही चीजें पसंद आती हैं। भाई बच्चों को आए क्यों ना, हमारे बचपन में ये सब चीजें कहाँ होती थी, हम लोग बस वो मिट्टी के ठेले बना के खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए है टॉय फेस्टिवल। जी हाँ, टॉय फेस्टिवल जो कतर में आ चुका है, सबसे बड़ा कतर का शो, एकमात्र ऐसा शो जहाँ पे भाई एक महीने तक ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कतर में मिलेगा आपको ये एक महीने के लिए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको ये कतर में देखने को मिलेगा। मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यानी कि DECC में आपको ये मिलेगा। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लाइव शोज, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस, शॉपिंग, हर एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और टॉय फेस्टिवल हमें कभी निराश नहीं करता और बहुत सी ऐसी चीजें नई ऐड करता है जो हमने शायद कभी एक्सपीरियंस की ना हो और कभी देखी भी ना हो। और वही एक्सपीरियंस के साथ इस साल फिर शुरू होने वाला है टॉय फेस्टिवल। तो भाई बस थोड़ा सा सब्र और समर का टाइम आने दो, जुलाई का महीना आने दो और एंजॉय करो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भाई आजकल की मूवीज का कंटेंट तो देखो, एक ही घर की आइटम पे पूरी मूवी बना देते हैं यार। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग भाई, कहाँ से इनका इतना दिमाग चल रहा है जी। हाँ, मैं बात कर रही हूँ टोस्टर मूवी की जो नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज हुई है हाल ही में, स्टारिंग सानिया मल्होत्रा, राजकुमार राव एंड अर्चना पूरन सिंह। जी हाँ, देखिए सानिया मल्होत्रा जी की एक्टिंग की बात करें तो उनके एक्टिंग स्किल्स हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें वो टिपिकल डिफरेंट गर्ल लग रही है। एंड सेम एज विद राजकुमार राव, उन्होंने ऐसी कॉमेडीज तो वो करते रहते हैं, दैट मीन्स अ डार्क कॉमेडी वो करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें ना वो एक अलग ही मोड में लग रहे हैं, जैसे कंजूस किस्म का इंसान जो कंजूसियत की हद बार कर देता है, माई गॉड। लेकिन अर्चना पूरन सिंह, ओ माई गॉड, उनको आप पहचान नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में इनिशियली जब मूवी स्टार्ट हुई तो मुझे पता ही नहीं था कि अर्चना पूरन सिंह भी है मूवी में, बट देन जब उन पे लाइमलाइट गई तब आई अंडरस्टूड, ओ माई गॉड, मैंने इस लेडी को मिसेस ब्रिगेंजा देखा है, अब मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ, लाइक ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव, मतलब इतनी डिफरेंट लग रही है ये। एंड सच्ची में बहुत डार्क कॉमेडी है एंड आपको बहुत हंसी आएगी, ऐसे ऐसे पंचेज है ना जो कुछ आपके दिमाग में रह जाएंगे, द वे किस तरीके से राजकुमार राव भाग दौड़ कर रहे हैं एक टोस्टर के पीछे, उसकी कहानी आपको देखे ही पता लगेगी। देखिए जरूर, मुझे पसंद आई है, मुझे ऐसी मूवीज पसंद आती है। राजकुमार राव जी फेवरेट एक्टर में नहीं आते होंगे लोगों के, लेकिन जो उनकी डिलीवरेंस है डायलॉग्स की और पंचेस की, जो उनका तरीका है बोलने का, भाई गॉड यार, एकदम माइंड ब्लोइंग है। बाकी अगर आपने मूवी नहीं देखी है आप देख सकते हैं इस वीकेंड या कभी भी, एंड स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: मिर्ची फ्रेश माल,
3: स्वैग स्टाइल और बोल्ड एनर्जी के साथ सुनो लिपस्टिक।

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. La vie est pas la burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको? ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन।

0: मैं वापस आऊंगा। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बॉर्डर की फिल्म की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी के बारे में, मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, जहाँ पे स्टारर परवरी वाघ इनके साथ एक्टिंग कर रही हैं, एंड उसके अलावा नुजरुद्दीन शाह देखने को मिलेंगी। एंड इसकी सबसे मस्त बात ये है ना कि ये डायरेक्टेड है बाय इम्तियाज अली, और एआर रहमान जी का म्यूजिक है। भाई क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो गया। ये मूवी हिट तो होगी होगी, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना सारे, तो भाई हिट होने का 100% चांस होता है। बाकी ये रिलीज होगी 12 जून 2026 को। देखना ये होगा कि ये जो रोमांटिक ड्रामा होगा ये कितना मेलो होगा और कितना खूबसूरती से दिखाया होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को नियॉन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: समय समय की बात है और समय को समझ पाना बहुत असंभव सी बात है। इसीलिए समय को मत समझिए, बस वेस्ट भी ना करिए, समय का सदुपयोग कीजिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ कल। स्टे ट्यून विद मिर्ची 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

जब बात आती है उन लेडीज की जो घर से बाहर निकल के अपना बिजनेस अपने बलबूते पे खड़ा करती हैं, तो उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो यही बात करें, आईसीसी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने ईद बाजार एंड मेहंदी नाइट आपके लिए सजाई है ऑन 22nd एंड 23rd मई को, जी हाँ, फ्राइडे एंड सैटरडेज को, वीकेंड है, और 6 PM से ये शुरू हो जाएगी, आईसीसी प्रीमिसेस में ही हो रही है, एंड इनका जो मेन पर्पस है इट इज़ फॉर वुमेन, जी हाँ, वुमेन को एम्पावर करना इस समय बहुत ज़रूरी है। एंड

We all support women, obviously. And अगर आप भी चाहते हैं कि जो small vendors हैं जिन्होंने अपना business अपने बलबूते पे अभी शुरू किया है and आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको support करना चाहते हैं, तो please आइए ICC premises और वहाँ पे shopping करिए इनके साथ, जहाँ पे आपको मिलेंगी traditional fashion jewellery and traditional outfits और भी उसके अलावा बहुत से leather products और बहुत सी चीज़ें, खाने की बात हो चाहे पहनने की बात हो, सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिलेगा. और क्या चाहिए, वीकेंड भी आपका मस्त हो जाएगा, उसके अलावा आपकी ईद की शॉपिंग भी हो जाएगी. बस करना क्या है, ICC premises जाना है और enjoy करना है. And for more updates, stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

0: भट्ट
1: अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
1: खट खट हू दैट
2: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: भट्ट
1: भट्ट अरे भट्ट हूँ
0: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है
2: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: या
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
2: जी फरमाइए। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Burga, burga. La vida para la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Motor से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
3: मैडम प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है.
2: ठीक है सर.
3: तो 5 सेकंड जल्दी.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
2: हेलो.
3: हेलो.
2: हेलो.
3: प्लीज जल्दी बता लो.
2: सॉरी, कोई कस्टमर के लाए गाड़ी में. हेलो.
3: हेलो. होल्ड नहीं कर सकता. हेलो.
5: हाँ जी सर.
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड.
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
3: वो यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर. इग्निशन ऑफ कर दो.
3: इग्निशन. एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
5: हाँ जी.
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी.
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
5: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई.
4: मैडम क्या नाम है आपका?
2: दिव्या.
4: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
2: Oh, I was so tense, I don't know what happened.
6: कुकड़ू को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: जोश.
8: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अगर आप भी मेरी तरह लेजी है ना, तो ये एक सिंपल सा जो एक मंत्र है ना, वो लेके आई हूँ आपके लिए। जी हाँ, मंत्रा कुछ इस प्रकार है, करना कुछ नहीं है, फीलिंग लेजी, और एक घंटे बाद आपकी मीटिंग है, आपको अपने टीथ को ब्रश करना है। एंड ब्रश करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप राइट हैंडर हैं ब्रश करने के लिए, तो आपको लेफ्ट से करना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आपको राइट से करना है। तो उसमें क्या होगा, यू विल कन्फ्यूज योर ब्रेन। जी हाँ, आप अपने ब्रेन को मजबूर कर देंगे सोचने के लिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द थिंग विच आई डू यूजुअली, अनयूजुअल चीज़ हो रही है मेरी बॉडी में। एंड ब्रेन अपने आप जाग जाएगा और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू आर ऑल सेट रेडी फॉर योर मीटिंग, एंड दैट्स द फनीएस्ट एंड अ वेरी ट्रू फैक्ट जो आप जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे जरूर बताइएगा अगर आप करोगे तो। मुझे मिर्ची वन कतर पे डीएम करके बताइएगा, एंड मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। बाकी बस ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए ना सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इज हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। अच्छा।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अगर आप भी सोच रहे हैं कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कहाँ लेके जाएं जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज हों और बहुत मजेदार हो एंड एंट्री बिल्कुल फ्री हो, वेल मैं ऐसी ही जगह आपको बताने वाली हूँ जो बच्चों के साथ जाओगे टोटली फ्री है, एंड इट इज 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए एंड आपको वहाँ पे गेम्स, चैलेंजेस, हैंड्स ऑन फन डिजाइन फॉर ऑल एज ग्रुप्स आपको मिलेगा, एंड ऑल्सो इसका जो टाइमिंग है दैट इज संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे 9 AM टू 7 PM एंड ट्यूजडे इट्स क्लोज, सो थर्सडे 9 AM टू 9 PM, फ्राइडे इट्स 1:30 PM टू 7 PM. तो जाना कहाँ है? 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में, जहाँ पे ये एक्टिविटीज टोटली फ्री है, बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि एकदम नई नई एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, क्या चाहिए भाई, वीकेंड में आपका मजेदार हो जाएगा, अगर आप वीकडे में भी जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & हॉट.
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: बोला नहीं कि वो मैं था।
1: व्हाट अ वे टू कन्फेस अभय देओल, अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज अ चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक

0: खटखट
1: हू देयर
0: बनता
1: बनता हू
2: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को
1: खटखट हू देयर
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की। गाना नंबर 10 पर एक नई एंट्री है, गाने का नाम है छोरी। मिक्का सिंह एंड दया द रैपर का है गाना। उसके बाद मिट्टा रॉर का शीशा पिछले हफ्ते से 4 पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है। और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिटर और इन स्वरा वर्मा की आवाज में शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: स्वरा वर्मा मिटर और की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 9 पर हमने जो गाना सुना मिट्टा रोर की आवाज में शीशा, पता है वो 2 साल पहले रिलीज हुआ था। बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मिट्टा ने गाना अपलोड कर दिया एंड धीरे धीरे खुद अपने आप सोशल मीडिया रील्स बनाए उस पे, गाने के बारे में कॉन्वर्सेशंस करते रहे एंड 6 महीने बाद वो गाना ब्लो अप हो गया। उसके बाद कंसिस्टेंटली लोग उस गाने के साथ जुड़ते रहे, सो मच सो दैट कि 2 साल बाद इस गाने की म्यूजिक वीडियो बनी, ये रिलीज हुई एंड नए लोगों को इतना पसंद आया दैट हमारे चार्ट्स में पिछले 7 हफ्तों से ये गाना है। यही टेस्टिमनी होती है किसी गाने की कि आप कभी भी कहीं से भी सुने आप पहचान जाए उस गाने को। पिछले हफ्ते हमने आपको एक गाने का एक इंट्रो म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है। लिसन टू इट वंस अगेन। Lots and lots of right answers, but some wrong answers as well. The correct answer is Vaaste by Dhwani Bhanushali and Nikhil D'Souza, साल 2019 का ये गाना। आज भी इतना प्यार है इस गाने के लिए लोगों के दिल में। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही गलत गेस किया, पहला नशा तो ये दूर दूर तक साउंड नहीं करता है, बट आई हैव गॉटन सो मेनी रिस्पॉन्सेस सेइंग पहला नशा, एक कुड़ी। जिन्होंने भी गलत आंसर किया है, टाइम टू रिडीम योर सेल्फ, इंडी पॉप को इसकी बारी है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं बादशाह का एक गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। एक इंस्ट्रूमेंटल पीस है, म्यूजिक सुन के बताना है गाने का नाम क्या है। लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आज एक कनेक्ट और इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने में है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। गुरु रंधावा का गाना, गाने का नाम है वोग। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनेक्ट, एंजॉय। नंबर 8।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello, bhai Santosh se baat kar raha hu meri.
3: Main bol raha
4: hu. Haan ji, bhai Santosh yahan. थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
3: क्यों?
4: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
3: गए थे जी।
4: आपने धरने पे बैठे थे? आप
3: जी बैठे थे
4: वहाँ पे। लाठी, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
3: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
4: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
3: जी जी गए थे जी।
4: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
3: जी जी।
4: आपके पड़ी लाठी कोई?
3: मेरे तो नहीं पड़ी।
4: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
3: सर आप नाराज क्यों?
4: नहीं नहीं, नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
3: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर, लाठी।
4: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे,
3: बहुत दूर था
4: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
3: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
4: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
3: सर नाराज क्यों है?
4: तो नाराजगी की तो बात है,
3: मैं दोस्तों के कहने पे गया
4: तो मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई।
3: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
4: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है, बहुत दूर था,
3: नाराज
4: वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ। संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
3: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी,
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: Qatar का number one रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM Mirchi 1. It's hot.
8: Ghana
0: Indie Top 10.
8: Ghana Indie Top 10.
0: Kanika ke saath on Mirchi.
9: Number 7.

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना कोक स्टूडियो भारत का गाना, गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी, रावट और कुटले खां की आवाज में। ए अजनबी 4 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम पर, मुझे फॉलो करो। कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इफ यू थिंक अबाउट द इंडी पॉप स्टार्स फ्रॉम 2000s एंड 2010, द पंजाबी पॉप स्टार्स जैसे दिलजीत दोसांझ हो गए, उन्हें हमने उनके बड़े गानों के थ्रू डिस्कवर किया। बेसिकली जब म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें डिस्कवर किया, तब हमने उनके गानों को डिस्कवर किया। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट 4-5 ईयर्स, कंटेंट डिस्कवरी का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है। एंड म्यूजिशियंस आर्टिस्ट इस कंटेंट गेम में बेटर होते जा रहे हैं विद एवरी डे। एंड द न्यू वेव ऑफ पॉप स्टार्स आर दोस जो सोशल मीडिया के जरिए अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और सॉन्ग राइटिंग के थ्रू अपना म्यूजिक कनेक्शन बढ़ाते हैं। वन ऑफ सच आर्टिस्ट व्हिच आई फील इज डूइंग सो वेल एंड विल कंटिन्यू टू डू वेल इज कॉल्ड जीनी। देहरादून की एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर, लेट नाइट अपलोड, बहुत ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग। वो अपने फैंस के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो हुई है। इफ यू लुक एट हर सोशल मीडिया, यू विल सी दैट जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं वो बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट जीनी ने इस गाने को जब लिखा तो उसके पीछे व्हाट वाज शी गोइंग थ्रू, इट्स लाइक वो डायरी एंट्री करती है एंड हर फैंस आर इन्वॉल्व्ड इन इट। उनका एक गाना है कॉल्ड नादानिया, व्हिच इज अबाउट लॉस, ग्रीफ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लॉस। जब वो उस गाने को प्रमोट कर रही थी, शी वेंट अहेड एंड शी शेयर्ड विद हर ऑडियंस दैट अगर आपने कभी कोई लॉस फेस किया है एंड आप अभी तक उसे ओवरकम नहीं कर पाए हो, शेयर योर स्टोरीज विद मी। एंड सो मेनी फैंस पोर्ड देयर हार्ट्स, उनके कॉमेंट्स में अपनी बहुत पर्सनल स्टोरीज उन्होंने उनके साथ शेयर करी। दैट्स वॉट रियल कनेक्शन इज। वो हमेशा ऐसे छाती फाड़ के, ड्रम्स बजा के, सुपर स्टार की तरह नहीं होता है, वो बहुत ऑर्गेनिक एंड ऑनेस्ट होता है। उनके इंटरव्यूज में, उनके गाने में एक चीज बार बार रिपीट होती है, दैट शी वांट्स अ म्यूजिक टू नॉट साउंड परफेक्ट बट वेरी ह्यूमन, एंड ह्यूमंस आर फ्लॉड। दैट्स व्हाट मेक्स हर सो रिलेटेबल, कि जैसी वो ऑनलाइन है अपने गानों में भी वैसी ही है। शी इज हैविंग अ फैंटास्टिक रन। क्लब हाउस रूम से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, सेल्फ प्रोड्यूस्ड डेमोज, सोशल मीडिया में दोज लेट नाइट फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे सोल्ड आउट शोज, एंड शी हेडलाइन वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लॉलापालूज़ा अर्ली दिस ईयर। नाम याद रखो, नाम है जीनी। रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ाओ। आई एम गोना प्ले हर सॉन्ग कॉल्ड फीका फीका, विच फीचर्स चार दिवारी इन द म्यूजिक वीडियो। जीनी एट हर बेस्ट। This is Fika Fika playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: Blana, Indie Top 10, Kanika ke saath, on Mirchi, it's hot.
1: Mirchi Stories,
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.
11: Ghana Indie Top 10.
0: Kanika ke saath on Mirchi.
12: Mirchi sun rahe aap. This is the Ghana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jaye, mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna hai, koi baatein batani hai, bindas aake hit me up. I truly believe that gaane share karne se pyar padta hai. Aaj hum independent pop music ke bare mein jab baat karte hain, pop stars ke bare mein baat karte hain. All of them have been influenced and inspired by 90s and 2000s ka indie pop. हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जायंट था हिंदी फिल्म्स. आर्टिस्ट के लिए सक्सेस होती थी कि एक बड़ी फिल्म में मेरा गाना आ जाए. और फिल्मों के साथ साथ इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म स्पेस में जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पॉप म्यूजिशियंस लाइक शान, मोहित चौहान, लकी अली ने वो स्पेस क्रिएट किया, उसका इम्पैक्ट हमें आज भी दिखता है. नीडलेस टू से दैट इंडी पॉप एरा वॉज द गोल्डन एरा ऑफ पॉप म्यूजिक. इसीलिए इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सोचता हूँ उसका दिल बाय बाबुल सुप्रियो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रोमांटिक पॉप सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम. ऑफ कोर्स उस एरा में सिंप्लिसिटी वाज कोर ऑफ ऑल द रोमांटिक सॉन्ग्स, पर इस गाने में कुछ और ही है यार, कुछ है वो बात. कोई ज्यादा क्लेवर लाइंस नहीं है ना ड्रामा है, बहुत सिंपल सीधा प्यार का इमोशन है. आई थिंक द हीरो इंग्रेडिएंट हियर इज इनोसेंस. प्यार की डेफिनेशन को या उसके मतलब को ढूंढने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करिए. द सॉन्ग एक्चुअली इज ऑल अबाउट अ क्वेश्चन. कन्फ्यूजन है, हेजिटेशन है, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी है, एंड टीनेज लव वॉज ऑल अबाउट ऑकवर्डनेस. आई रिमेंबर मैं जब इस गाने की म्यूजिक वीडियो को देखती थी बैक इन द डे, आई यूज टू टोटली इमेजिन माई सेल्फ एज दैट सेंट्रल कैरेक्टर जिसके लिए ये हीरो ये गाना गा रहा है. एंड आई स्वेयर आई एम नॉट इवन लाइंग, आज भी इस गाने को सुन के मेरे को बटरफ्लाईज आती हैं. समथिंग इन द वॉइस ऑफ बाबुल सुप्रियो, एक वो वॉर्म्थ है, एक फेमिलियरिटी है, ऐसा लगता है बस मेरे लिए ही बना ये गाना. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आई एम गोइंग टू राइड ऑन द डेलुलु एक्सप्रेस बाबुल सुप्रियो की आवाज में. दिस इज सोचता हूँ उसका दिल ऑन आ कैसेट क्लासिक दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

I will exactly tell you how this song makes me feel. आप कभी फेरिस व्हील पे बैठे हैं, वो मेले वाला गोल वाला झूला, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है ना, that's what this song sounds like to me. बाबुल सुप्रियो की आवाज में, that was सोचता हूँ उसका दिल on our cassette classic this week. Ultimate love bender है ये गाना. At RJ Kanik on Instagram पर आओ, हमारे साथ 90s and 2000s के ऐसे गाने शेयर करो which you think still hits home. My sound producer अश्काय और मैं बहुत बड़े फैन हैं आपके और आपके रिकमेंडेशंस के, एंड यू हेल्प्ड अस मेक दिस सेगमेंट इनटू सच अ सक्सेस. सो कोई भी रिकमेंडेशंस हो, बिंदास आके हिट मी अप. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, आगे बढ़ते हैं. संजू राठौर का गाना बैंगल्स पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 4. उसके बाद अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, अर्ज किया है इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: It's hot.
2: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
5: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
4: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल।
3: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
0: Ghana Indie Top 10.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
6: Number 2.

0: का नाम है बैरन बाय द वन एंड ओनली बंजारे. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कंपोजिशन. बंजारे इज अ म्यूजिकल एक्ट. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. स्वागत है आपको on the show which is called Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. Connect with me Instagram पर जाओ, मुझे follow करो. मेरा handle is @RJKanika. Gaana number 10 से Gaana number 2 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. Now before we move on to the numero uno song of the week, it's time for a quick recap right from the top. Mika Singh Daya the rapper का Chori, Anaya Naveela debut on Gaana number 10. Then Gaana number 9 पर मिट्टर और का शीशा.
2: तेरी आंखें पिछलों के सुन तो ना छोरी का हर.
0: गुरु रंधावा का वोग दिस वीक ऑन Gaana number 8. Gaana number 7 पर इस आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. उसके बाद गाना नंबर 6 पर दिलजीत दोसांझ का डीलर. डबल वैमी बाय दिलजीत दोसांझ अलोंग विद सिया रांझा ऑन गाना नंबर 5. संजू राठौर का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. देन अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3.
3: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें ये इश्क में.
0: बंजारे का बैरन ऑन गाना नंबर 2.
4: मुन्ने सांभ सांभ रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी.
0: बैरन पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है. इसका मतलब वी हैव गॉट अ न्यू सॉन्ग ऑन द टॉप. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके करण औजला एकी का गाना गाने का नाम है बॉयफ्रेंड फिर से क्लाइम करके बन गया है गाना नंबर 1. 24 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 1. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
2: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: काट काट।
1: कौन है?
0: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
2: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: हट काट।
1: कौन है?
0: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
2: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है। जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burga, burga. Navid wala burga. Mirchi burga.
2: Hello.
3: Bhai sahab, Srinivas Puri Thane se bol raha hu. Mobile kahan se mila aapko? ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुद गर्ल्स और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका। नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

काम किया। तुमने मुझे बदनाम

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी, तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए, गाना तैयार है, आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया, तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी। आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

नटराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कॉमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 और आप सुन रहे हैं शाम शानदार मस्त मौलक गौरव के साथ।

बहन भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी, राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी। लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी, तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मोटर से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी
4: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
3: ठीक है सर,
4: 5 सेकंड जल्दी।
5: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: प्लीज जल्दी बता दो।
3: हेलो
4: बात होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
6: हाँ जी सर,
4: सर प्लीज मेरे को बता दो मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो। सर
4: एक सेकंड रुकिए
6: सर, साइड में लेफ्ट साइड में।
4: ओ यार मेरा छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
6: सर इग्निशन ऑफ कर दो।
4: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
6: हाँ जी
4: एक सेकंड। सर कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
6: हाँ जी।
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
6: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
4: क्या करूँ?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
4: एक सेकंड रुकिए।
6: क्या हो गया?
4: गाड़ी ठुक गई।
5: मैडम क्या नाम है आपका?
3: दिव्या।
5: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
3: I was so tense, I don't know what happened.
7: कुकड़ू को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ only on मिर्ची it's hot
8: yeah पगला।
9: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज वाला रखा गया था। जिसका रीजन ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज संजय दत्त पे ज्यादा सूट कर रही थी एज कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज तब तक काफी मच्योर, काफी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नोवेल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है। प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कम्पोज्ड बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन्स करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
1: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। हो मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। वो मेरी

0: मैंने तो खुदा माना।
1: आहा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
2: बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: 89.6, 89.6, इट्स हॉट।

0: रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटेडन टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पे है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: ओ मेरी

0: मिर्ची
1: रात के बज चुके हैं 10 मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स रात के बज चुके हैं 10 मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स

ओए होए, थोड़ा उदास गाना, लेकिन फिल्म का नाम बड़ा हैप्पी। आप आए बहार आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे याद है इस फिल्म में ना राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन होते हैं उनका नाम विस्की होता है। कि पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जैसे मैं ढूंढ रही थी तो राजेंद्र नाथ साहब का ही नाम फिल्मों में क्या क्या रहा है, पोपटलाल, दीफू, प्यारे, चिंटू, पांडू, झटपट सिंह, विलायती राम, गोपू चंद, मनमौजी। इसी बात पे मौज मस्ती वाला गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Navirbala, burga. Mirchi, burga.
3: हेलो
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: फोर.
4: वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं.
4: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं?
4: सर वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

तो 1974 की रोटी फिल्म मनमोहन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कादर खान साहब ने लिखी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कादर खान ने जो इस फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे ना, वो सुन के देसाई साहब इतने खुश हो गए, उछल पड़े वो, मतलब यहाँ वहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो। खुशी में उन्होंने कादर खान साहब को एक टेलीविजन गिफ्ट किया, एक घड़ी गिफ्ट की। और जब उनसे पूछा कि आप ये डायलॉग्स लिखने का कितना पैसा लेते हैं, कादर खान साहब ने कहा 21,000 रुपए। तो देसाई साहब ने उनको कहा कि रबिश, आपको 1,21,000 मिलेगा। भाई ऐसे मालदार दिलदार लोग हम सबको जीवन में मिलते रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
11: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1984 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म उत्सव शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। इनफैक्ट जो रोल शशि कपूर साहब ने प्ले किया था ना, वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मतलब उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन किस वजह से वो नहीं कर पाए, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए शशि कपूर साहब ने इस बारे में क्या कहा था।
1: अमिताभ जी काम करने वाले थे क्योंकि पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनके हर यानी कि शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम एक डेढ़ साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में।
0: वेल, बच्चन साहब की सेहत अगर ठीक भी होती तो भी वो इस फिल्म में काम नहीं करते, क्योंकि सिलसिला फिल्म के बाद तो रेखा के साथ काम करने का सिलसिला खत्म हो गया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
5: खट खट।
6: कौन है?
5: अज्जू।
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए

0: Cut, cut. Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: 89.6
1: इट्स हॉट। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1970 का सुपर डुपर हिट गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो आन मिलो सजना का ये गाना जो है, इसको शूट करने में ना बहुत दिक्कत आ रही थी, बिकॉज सूरज ढलने का सनसेट का शॉट लेना था, जो हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली किसी तरह हुआ और सूरज ढलने पे ना मुझे राहत इंदौरी साहब की दो लाइन्स याद आ रही हैं। दिन ढल गया तो रात गुजारने की आस में सूरज नदी में डूब गया और हम ग्लास में। सबके अपने अपने ग्लास होते हैं। मेरे ग्लास में रात को पेपरमिंट टी, कैमोमाइल टी होती है, उससे कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो कम हो जाता है, नींद आने में मदद मिलती है। ये नींद ना आने की बड़ी भयानक बीमारी सी लग गई है जीवन में।
1: ना नींद आती है, ना मोहब्बत आती है, ना कोई आता है, बस याद आती है।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. 89.6 Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: काट।
1: कौन है?
0: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
0: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
2: खट खट, हू दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.